बोलो सतगुरु भगवान की। सतगुरु भगवान विश्व गुरु महेश्वरानंद जी महाराज का उनके महिमा का ये भजन है।

0: वादिदेव श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म अलकपुरी जी महादेव की जय। हरिओम। वेरी नाइस, थैंक यू। एंड नाउ यू हैव मेडिटेशन, सो टुडे इज अ मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ यू विथ योर माला एंड मेडिटेशन ऑन योर हार्ट to get peace, harmony, and for all people, for all creatures. Let us give something from your heart, peace, harmonies, understandings, etc. So, don't run away out of the room. Always when I go, then everybody is going. And if you want to go, then go now. Okay? So, but now we have some very, very nice yogi. And he will say some mantras. And then we go. Hari Om. Those who want to go in room, then go directly in the room. Otherwise, 1 hour you will meditate here. Yes.

0: श्री अलकपुरी महादेव की जय। देवा दिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानंद भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मा माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी
0: गुरुदेव की जय।

पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज की जय।

0: की जय। राधे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। मायसेल्फ डीसी सुरंगानंदी विराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो टीवी। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: Hari Om, Hari Om, Hari Om. Dhanyavad.
1: Thanks. Pranam, dhanyavad. समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट. माई गुरु अनूप जलोटा इट्स भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन.

आने लगी महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसे लागी लगन, मेरा हो गई मगन।

बोलिए सदगुरुदेव की जय, बोलिए मीरा के श्याम की जय। आखिरी एक भजन कबीर दास जी का, चदरिया झीनी रे झीनी या तो राम रंग रस बीनी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो।

ॐ शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। एक बार इफ यू वांट थैंक यू।

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

सदगुरुदेव को प्रणाम, सभी सज्जनों को प्रणाम। धन्यवाद। A little composition written and composed by me. Please hear and entertain. And please, peace to God and prayer to our Gurudev. In the world, nothing. झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जी गुरुदेव। मिला
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी साह सतगुरु साहिब देवपुरी सा सब संतन सिर ताजे सब संतन

है ऐसो ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे बड़े भागी जन सुने रो मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे मैं हूँ जैसो को तैसो नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशो नहीं है ओम सो।

0: की
1: जय। जय पुरुषमहादेव
0: की
1: जय। श्री शरण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी की जय।
0: गुरुदेव की जय। दी शांति शांति।
2: आप तो काफी काम कर रहे ना।
0: जी जी
2: भी आपका, लेकिन फिर भी आपका बहुत।
0: अरे अरे, वो भी पहला मौका है। पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपके शरण में देश विदेश में आपके आश्रम में जहाँ आप आदेश करो।
1: कमरा दे दिया उनको।
0: रुकूंगा, आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
3: बोले शंकर भोले, ओ, ओ, ओ, ओ शंकर भोले,
0: शंकर भोले। रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी। आई एम प्रेजेंटिंग गुरु शरणम।
3: जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, दादा दादा दादा। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, ये सारा जग बोले। जय शंकर भोले,

शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः मातृपिता गुरुदेवाय नमः भारत भूमि नमः ओम सनातन

नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गजानंद भगवान की जय। पहले गजानंद जी की जय बोलनी चाहिए थे, भूल गए। गजानंद जी महाराज क्षमा कीजिए, आपकी सबसे पहला स्वीकार कीजिए। गजानंद जी भगवान की जय। ओ बस लड्डू खाते हैं बड़े बड़े। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, स्पिरिचुअल सीकर्स, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा एंड द लाइफ एंड going to the spiritual path of yoga.

யோக யோக கரம்சு கோஷலம். பகவத்கீதா செய்த் யோகா கர்மசு கோஷலம், அச்சே கர்ம. வென் யூ டூ த குட் கர்ம, கர்ம யோகா, தென் யுவர் யோக சாதனா வில் பி சக்சஸ்ஃபுல், நம்பர் ஒன். பட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் யோக சாதனா மீன்ஸ் நாட் தட் யூ இன்டர் இன் டு த பிரம்மலோகா. தட்ஸ் இட். தேர் இஸ் the key to the brahmaloka. Therefore it is said moksha mulam guru kripa. Finally the door is there, and who is opening the door is Satguru Dev. Doesn't matter what you do, all kind of sadhanas, yantra, mantra, tantra, whatever you do, puja, anushtan, everything. But finally, is there is coming what's called the Guru Kripa Hi Kevalam. Bhagavan Krishna also said, doesn't matter from which path, from which direction you come, ultimately I am there on that gate. And that he will lead you to the Guru Bhakti and through the Gurudev. Ram Krishna se kaun bade, usne bhi guru keen, teen lok ke naath satguru ke adheen. Who is the greatest than Bhagavan Ram and Bhagavan Krishna? They are the god of the all the three worlds. But to come to the Brahma, even Bhagavan Ram and Krishna, all the other incarnations, they have been doing the seva to the Gurudev. Day before yesterday, I was in the Rishi, Sandeep Rishi. Who was the Sandeep Rishi? Where Bhagavan Sri Krishna chote tumhare jaise the, tab school jate the. Kahan jate the? School. To kahin likha to hai nahi, lekin baat hai. Kya hai? Likha to nahi tha. Koi nahi likhte na. Dande to unke bhi pade the. Kiske? Nene Krishna ko bhi danda pada tha bhai. कान पकड़ा था तो अपने अगर कान खींचे गुरु जी तो क्या, कोई बात नहीं है. जैसे कान खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इस दिल से अंदर जाएगा. वेरी गुड, समझ में आ गया. कान खींचते ही वैक्यूम बनता है. व्हेन द योर मास्टर विल पुल योर ईयर्स, इट मीन्स the hole opens, vacuum opens, and it sucks in the knowledge. Guruji pakadi choti, aur choti kare, cham cham, aur vidya hai, gham gham. Guruji pakadi choti, aur choti kare, cham cham, vidya aave, gham gham, aur nahi pade, to danda pade, dham dham, dhamma dham dham. All right, theek hai? So, even it is said that Bhagavan Paramahansa Ramakrishna was a great worshipper, great bhakta, great saint, and he was devoted doing the puja to Divine Mother Kali. Mother Kali. Kali Mother, always her tongue is long out. And that's why, you know, when you go to the Calcutta and what you call them,
कौन सा देश काला था कलकत्ता? बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, बंगाल. बंगाल में वेन द साधुस गोज देयर एंड देन दे मेक ए वेलकमिंग टू देयर हाउस, देन ऑल द लेडीज, आई थिंक जेंट्स ऑल्सो बट द लेडीज, दे वेलकम द साधुस. हाउ? कैसे वो वेलकमिंग करते हैं लोगों को? माथाएं बंगाल देश में, आप गए थे? नहीं. वो जीभ निकालती है. मैंने कहा क्या हो गया? आई वॉज देयर. तो पूरी जीभ निकाल के, वो तो काली माता की जो पद्धति थी उस पद्धति से आपको स्वागत करते हैं, आपको सम्मान देते हैं. और हमारे राजस्थान में जीभ निकालते ही अब सुगन समझे कि ठोको थप्पड़ी निकाल दो बाहर. लेकिन वहां नहीं, दैट इज अ डिवाइन मदर्स ब्लेसिंग. एंड सो व्हेन यू गो टू द बंगाल एंड देन दे वेलकम्स यू एट होम, व्हेन दे मेक द चरण पूजा आरती एंड दे वेलकम्स यू इन द डोर, देन दे पुट टंग आउट एंड से लुगाई करती. मेरे को तो आता ही नहीं, आई डोंट नो हाउ टू डू. लेकिन थैंक यू, दैट वॉज समथिंग समथिंग लाइक दैट. डू यू अंडरस्टैंड मी? यस, बट डोंट टेल मी लाइक दैट. ओके, वी आर इन मरुधर, वी आर इन मरुधर देश. एंड मीराबाई सेड टू भगवान कृष्ण, केसरिया वाल में पधारो मारे देश, केसरिया वाल में पधारो मारे देश. तो केसरिया कौन है? वो केसरिया बाना पहनने वाले भगवान कृष्ण, उनको केसरिया कहा गया है. और वह बालमा मीन्स माय डियर वन, माय गुरुदेव. पधारो, वेलकम, प्लीज कम मारे देश, इन माय कंट्री. मीराबाई से केसरिया वालमा पधारो मारे देश. लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि ओ हो, वे बायो गावे नहीं भाव भजन गावे कि वे कौन सफारे सफेरे लोग. केसरिया वाल मा पधारो मारे देश, तो जाने क्या ओ हो, तो कोई गीत है. लेकिन वो भगवान का है, भगवान की कथा हो रही है. दे आर वर्शिपिंग एंड शी इज कॉलिंग भगवान कृष्णा एज पितंबर. भगवान कृष्ण का दैट वॉज द कलर ऑफ हिज ड्रेस एग्जैक्टली लाइक यू हैव. देयरफॉर इट इज सेड, नन्हे मुने बच्चे जो हैं बाल गोपाल, क्या कहते हैं? बाल गोपाल. तुम बाल गोपाल हो ना, तो तेरे बाल है. हाँ, तब तो गोपाल हो. चोटी है, बाल तो है लेकिन चोटी नहीं, तो बाल ने गोपाल कटे. गोपाल कहाँ है बेटा? चोटी रखोगे तो गोपाल बन जाओगे, तिले करोगे तो और कुछ बन जाओगे. दैट्स इट. यू अंडरस्टैंड मी? समझ गए बेटा? अब चोटी चालू कर देना. चोटी में बहुत शक्ति होती है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. बिंदु चक्र है कुंडलनी के अध्याय में.

0: Nasriman Narayan Narayan Narayan Nasriman Narayan Narayan Krishna Kanayalal ki Sachidananda Bhagwan ki. So, Aradhya Bhagwan, Paramhans, Paramhans. परमहंस किसको कहते हैं? वो आत्मा जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, वो ही तो जिसको कहते हैं ब्रजाहवन के साथ में संन्यास दीक्षा होती है, तो दैट समय इज नोन एज परमहंस की दीक्षा हुई है. सो द परमहंस इज दैट वन व्हेन यू गेट सेरेमोनी द यज्ञ एंड यू गेट दैट काइंड ऑफ यज्ञ ब्रजाहवन. That time you have a sannyas diksha and then you have right to get the title of the Paramhansa. That swan of the Paramatma Brahman. That's it. That's it. So, Ramakrishna Bhagwan, Paramhansa Ramakrishna, was great devotee of the Mata Kali. And in the temple, sometime he used to cry. You have to become like a little baby. Gurudev ke samane, in the front of the Gurudev, in the front of the God, you don't think that you are a great man, you are a director, you are an engineer, you are a prime minister, you are a president, you are a this. In the front of the Bhagavan, you are a Bal. Kya hai? Bal Gopal. एंड जब वो बाल गोपाल को भूख लगी है, दूध पीना है और माँ आई नहीं, तो क्या करता है? वो रोता है. रोता है तो माँ दूध पिलाती है, नहीं रोते तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है. यस, सो इवन द गॉड विल नॉट फुलफिल एंड फीड यू विद दैट नॉलेज, दैट ब्लेसिंग्स, दैट एनर्जी. If you don't pray to God with the heart, virah ki mari ban ban dolu, virah agni. There are many different kinds of the fire. Jata agni, dava agni, havan agni, chitta agni, krodha agni. Kya Maharaj ji? Vaisa hi virah agni. Virah means love. Virah means longing. Virah means devotion. Burning desires, that's called burning desires. But you can burn into the coal, but nothing will happen. You have to surrender to the Gurudev. So, Paramahansa Ramakrishna, the Gurudev of the a great saint, what you call the Swami Vivekananda ji Maharaj. So Swami Vivekananda ji was known because he went to the many countries and he was a good speaker. But before the Vivekananda, there was a great saint in the Western countries. Yes, many, many. And now there are many Vivekananda, greater than the Vivekananda ji, who is moving in the world. But Vivekananda ji was accepted as a international or a national dignity of the saint as Swami Vivekananda ji, who is a great speaker, great things, there is nothing to say. We worship him. So, Paramahansa Ramakrishna, while doing puja hours and hours, and he was in the temple, Kali temple in Calcutta. कलकत्ता वाली काली काली कलकत्ता काली. हाँ, सो ही वॉज क्राइंग मदर मदर मदर. सो फ्रॉम दैट इट इज सेड, आई एम टेलिंग यू, आई हैव वॉज नॉट देयर, दैट इज आई एम ओनली टेलिंग व्हाट वी हियर. आप कोई नहीं थे वहां? आप वहां थे क्या? हाँ नहीं गए, पर परमहंस रामकृष्ण को देखा था वहां रोते हुए?
1: नहीं नहीं
0: नहीं महाराज, नहीं,
1: लोग
0: Belur Math में बैठो. So भगवान भगवान ही है. जो आत्मज्ञान हो गए वो भगवान ही है. वो तो ब्रह्म समान है. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Adore, adore, adore, obey, obey, obey thy master, then you will be successful, otherwise your knowledge, tons of theory, is nothing compared with the gram of the practice. Chahe kitne hi granth padho, chahe kitne shastra padho, lekin jab tak wo jhalak nahi ho atma ki, ज्ञान नहीं हो तो सब बेकार है.

का द्रोही होता है उसका काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। एक बार आपने गुरु किया, चाहे वो गुरु गुंगा, गुरु बावला, गुरु कैसा भी हो, तुम उसके अंदर में तुमको वो गुण देखना है कि ये मेरे गुरु है, चाहे पत्थर का भी हो गया तो कोई हो गया। सो द मोक्ष इज ओनली देयर एंड वंस ओनली। मास्टर गुरु यू कैन नॉट चेंज ऑलवेज। You have only mother one who give you the birth. You have only one father who gave the birth. But you can call every lady as a mother. You can call every man as a father. But in reality, who is your mother? Who is your father? Only one. And therefore, if you want to get the moksha, you want to get to the liberation, you want to get atmajnana, if you want to achieve that what you want to achieve, then surrender to only thy one Gurudev. Dhyana mulam guru murti, puja mulam guru padam, mantra mulam guru vakyam, moksha mulam guru kripa. After that, you go ahead with your yoga sadhana. That will help you. That will uplift your consciousness. It will bring you somewhere. But then, jungle mein le jaake chhod dega. Jungle mein le jaake chhod dega. All they are the pagdandi. Keval mukhya path to sanatan dharma hai. Highway. That will lead you to your destination. Other are little footpaths. It will lead you far and far and far in the jungle. At the end, this path will slowly, slowly disappearing, and you go a little far. Who is sitting there? Your uncle. Kaunsa uncle? Lion. Lion beta hai. Yes. Ya sher beta hai. Kaunsa? Sudhar Singh sher. Acha, ajao beta. शेर को देखा कभी टेलीविजन में? वो देखा। तो इसीलिए अवर परंपरा, अलखपुरी जी परंपरा, विच इज फ्रॉम द हिमालया, ऑन हिज नेम इज दैट होली रिवर अलकनंदा। नंदा इज ए देवी, लाइक इन बंगाल द काली देवी, और in Gujarat, Amba Devi. So there are many different Devis. So in the kingdom of the Alakpuriji, after the Badri Vishal, Badri Narayan, you go far about 8-9 kilometers. That is called the kingdom of the Alakpuriji. And in kingdom of the Alakpuriji is the Kubera. The Bhagavan ka वो क्या कहते हैं ट्रेजर को, कोषाध्यक्ष, भगवान का कोषाध्यक्ष जो वो है कौन? कुबेरा। कुबेर इज लिविंग इन द किंगडम ऑफ द अलकपुरी जी, एंड देयर इज अलकनंदा निकलता है वो अलकपुरी जी के नाम से। और क्योंकि वहां देयर in the kingdom of the Alakpuri ji, there was a divine mother that's called the Nanda. So Nanda Devi ki puja hoti hai, jaise hamare Rajasthan mein Gangor ki puja hoti hai. Parvati hai. Abhi hogi puja, log jayenge, mela ka mela lagega. To wo Devi jo hai, Nanda Devi aur Alakpuri ji, उससे नाम पड़ गया अलकनंदा नदी, जो जाकर के इधर भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही मिलकर के देवप्रयाग में बिकम्स वन रिवर गंगा। बट ऑल्सो ऋषि भागीरथी डिसाइपल, हर नेम वॉज गंगा, एंड दैट्स वाई भागीरथी ऋषि गेव हिज blessing and said, this river should be on the name of my disciple Ganga. So Guru, he
ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮದಿತ್ಯ ನಾಸ್ತಿ.

अलकपुरी जी महादेव की, देव्याधिदेव देवेश्वर महादेव की, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म गौ माता की जय, सनातन धर्म भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति।

बोलो सतगुरु भगवान की। सतगुरु भगवान विश्व गुरु महेश जी महाराज का उनके महिमा का ये भजन है।

0: दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी महादेवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: Blessings to all of you.
2: Požehnanie vám všetkým.
0: The blessing of Sri Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
2: Požehnanie Alakpuriji Siddhapeetha Parampari.
0: Thank you for remembering that

हरिः ॐ सहस्रशिरेखापुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच भाव्यं उतामृत त्वसि येषानो जदन्नेनातिरोहतिः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि माल्यादिनि सुगन्धिनि मालित्यादिनि वै प्रभो पूजं ग्रहाण देवेश प्रसीद श्रीगुरुदेवेश्वरः अब आप बैठो दोनों नीचे बैठिए आप दोनों अब आपको गुरु मंत्र बाबूजी देंगे है ना बाबूजी कुछ चाहिए आप दोनों हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के मन में अपने गुरुदेव का ध्यान और अपने इष्ट देवता का ध्यान ओम इष्ट देवता भ्यो नमः नमः बोलो नमः ओम कुल देवता भ्यो नमः ओम स्थान देवता भ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवतायै श्री गुरुदेवेश्वराय नमो नमः

0: ये बनाओ बाबूजी के लिए, ही विल मेक इट फॉर यू। पहले बड़ा वाला डालो। हरिओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबको आशीर्वाद दे रहे मैनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुदेव। सामने से इधर आ जाओ ना आप लोग। नहीं बनाया ढंग से, डला नहीं अंदर। सो वी हैव फ्यू थिंग्स टुडे। पहले एक शॉल लाओ जल्दी यार, तुम बाप जोड़ जाएंगे। जगदीश जी जरा, फर्स्ट थिंग यू माइट ऑल नो आवर डियर जगदीश जी। जगदीश जी इज वर्किंग विद अस फॉर द पास्ट 30-35 ईयर्स। एंड दोज ऑफ यू हु नो विक्रम फ्रॉम चाय, इट्स हिज फादर। सो जगदीश जी, हाँ एक मिनट। एंड जगदीश जी वॉज थर्ड, एक मिनट बाबजी, एक मिनट, एक मिनट। सो जगदीश जी वॉज टायरलेसली वर्किंग फॉर द पास्ट 30-35 ईयर्स। एंड ऑन गुरु पूर्णिमा ही सेड ही वॉन्ट्स टू रिटायर फाइनली एंड नॉट एनी मोर वर्क। सो टुडे इज हिज रिटायरमेंट प्रोग्राम। योगेश जी हैज़ वायरल फीवर, सो ही लुक्स लाइक ही वॉज इफेक्टेड, बट स्टिल बाबजी उठ जाएंगे, लेके आऊँगे जब तक। बाबजी 5 मिनट है ना, लो आ बैठो, जब तक बैठो यहाँ सामने बैठो बाबजी के पास, आ जाओ इधर आ जाओ। सो टिल हिज वाइट, इधर आ जाओ, टिल हिज वाइट शॉल कम्स ही विल वेट एंड मसाज स्वामीजी फीट, दैट्स स्वामीजी स्टिल सिटिंग। लो पान दबाओ जब तक, उठने नहीं चाहिए। सो इन द ट्रेडिशन ऑफ गुरु पूर्णिमा आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव ऑल द सन्यासीज the shawl and dakshina as it goes every year. So please Panditji, you sing the mantras. All sannyasis please come before Swamiji gets up. Thank you. Panditji shuru karo.
1: ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुख एवे

0: श्रीदेव बाबा श्रीदेव पुरी जी भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेशानंद जी विश्व गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतारपुर जी महाराज की जय।
1: बोलो श्री दीप नारायण भगवान की जय। गुरास गुरास बिना कारज नाही सही,

0: Brahmananda ji Maharaj ki jai. Shri Swami Avatar Puri ji Maharaj ki jai.
1: तो हरि का नाम सुमरन प्यारे तेरा जन्म मरण सो डेथ एंड बर्थ विल कम एंड गो विल हैपन बट डू हरि नाम विच मीन्स रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड रिमेंबर द नेम ऑफ द गुरु रियलाइज दैट बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल स्टे विद अस द नेम ऑफ द गुरु द नेम ऑफ आवर मंत्र दिस ऑल थिंग्स विल स्टे रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्पररी विल गो ही ऑल्सो हैड अ सिमिलर प्लान ऑफ रनिंग अवे रनिंग अवे डजंट ऑलवेज हेल्प एज वी फिगर्ड आउट इन द फर्स्ट स्टोरी दिस वन हैड अ बेटर आइडिया ही हैड मोर मनी सो ही डिसाइडेड मेडिटेशन नॉट आई विल फ्लाई So one day he was sitting in his home, thinking, and suddenly he got a knock on his door. He opened the door and Yamraj was standing there. Yamraj said, Chalo, let's go, time's up. No, sorry, this was the first story. The second one was that he went to astrologer actually. Yes, true. He went to astrologer and astrologer said, this Sunday, Yamraj will come and take you from Delhi. So he said, I'm sitting in Jadan. Why should I even go to Delhi? And why should I even stay in India? So he

0: And that's why name is also the Joshimath. But he's of course not from that ashram, but from this area. So he will chant on the occasion of the holy Guru Purnima, Guru Stuti, first Shastivachan and the Guru Stuti. So we welcome our Panditji.
1: खड़े हो जाओ इधर.
0: हाँ गुरुजी के पास. एंड यू कैन पुट द कैमरा ऑन हिम इफ इट इज फंक्शनिंग स्टिल. आप तो चालू करो.
2: परम सम्मानीय पूज्य पाद श्री स्वामी संतन स्पर्श सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ. आई विल चांट मंत्र फॉर पीस ऑफ एवरीबडी हार्ट माइंड पीस ऑफ दिस प्लेस ऑस्ट्रेलिया और कंट्री एंड फॉर

0: पूजन करना है।
1: हाँ
0: हमारा जो
1: दुष्ट ढंग का
0: है,
1: लेकिन दुष्ट ढंग का जोश वही
2: करिए। एंड वी हैव गुरु परंपरा इन आवर इंडिया, वी रिस्पेक्ट आवर मास्टर्स।
1: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग,
2: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर टू सी द दर्शन ऑफ गुरुदेव। इट स्टार्ट फ्रॉम द नारायण।

0: की जय
1: इंदुदरम समरत स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु परम स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय स्वामी अवतार पूज्य महाराज की जय गुरुदेव सम

0: ओम बोले सिद्धिप नारायण भगवान की जय।
1: Tak budeme mít modlitbu teďka. Okay.

की जय। भगवान की जय। की जय। देव की जय। महिषानंद पूज्य गुरुदेव की जय। जय।

Purnima, and all of you know lot about Guru Purnima. I have been speaking many times and giving the lectures on what means the Guru Purnima. It is the Gu is the darkness and Ru is the light. But that light, which was the darkness, the earth was under the ocean. And Varaha incarnation brought this globe out of the ocean. That time, first time, when there the radiance, the light of the sun and moon, from that side was the Guru, darkness, from the darkness to the light. Now in this modern world, we cannot survive. We cannot do anything without Guru. But Guru means not only some sadhu, not only rishi, but everything who is giving you the knowledge of, for example, how to drive the car, how to ride the cycle, how to write, how to do something, how to cook. Oh my word, 85% in the world people cannot cook. अरे किन्हें खानो बनाना आवी को नहीं? आजकल ठीक है भाइयों हैं जो को हमें एक पाव बहन में लहसुन गाल दो ने, जीरो ही गाल दो ने, आई गाल दो ने, वो ही गाल दो ने, सब्जी में गाल दो ने, मिर्ची डाल दो ने, हल्दी डाल दो ने, आई हुई गियो। अरे आज हमारे भाई यहाँ बैठे हैं भानु भाई हैं अहमदाबाद वाले, कौन नाम है? धनजी भाई क्या जल्दी और किसा प्रकार का बढ़िया भोजन बनाया कि भाई आल में क्या सब्जी मसाला डालना है, बैंगन में क्या मसाला डालना है, और टमाटर में और इसके आप रखेंगे यानी गोल गोल आलू और अलग अलग सब्जी के अंदर अलग अलग मसाला होना चाहिए। हमारा तो फॉर्मूला एक ही है, बस एनी मसाला इन हरि ओम तत्सत। तो आज देख लो कि 85% लोग भोजन नहीं बना पा रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया? व्हाट हैपेंड कि जो महिलाएं जो शिक्षित है बहुत अच्छी है। आज महिला चाहे आज इस युग के अंदर इन दिस वर्ल्ड अगर आपको शांति लानी है तो महिलाएं ही ला एक पाएगी, नहीं तो नहीं होगा। यस, लो कोई ताली नहीं बजाओ लोग वहां से। वाह भाई भले बजाओ, पहला बजाना है थी। लेकिन वो महिलाओं को अहंकार हो गया, मंकार को अहंकार हो गया। बिजली पनीर ने तो आएगी पर वह कह के मैं क्यों रोटी बनाऊं, थारू बनाऊं, थारी माँ ने कह दे वाह बना दे, मैं तो डॉक्टर हूं, हाँ मैं तो बड़ी अफसर हूं, मैं क्यों रोटी बनाऊं। वो महिलाओं का अहंकार के कारण चूल्हा खराब हो गया, चूल्हा की जगह किया आ गया गैस, वो गैस हो गया पेट में, यानी वो क्या हो गया कि एक रेस्टोरेंट हो गया। और रेस्टोरेंट नहीं हुआ तो कोई आजकल ऐसे भोजन बना करके आपके सुपर मार्केट में जाओ लेके आ जाओ और गर्म करके खा जाओ। अब उस भाई साहब ने कहीं उठाए नहीं कि उनमें तो कहीं लगाओ, क्या कह तो कह टमाटर का वो लगा दो ना, कहीं के वो टमाटर का होता है केचप, वो आदमी क्या कि मैं तो नहीं केचप करूं। तो वह क्या कि दही लगा दो। अरे भाई जो भोजन का है कि बैठना तो छाया में हो बोलो केयर, बैठना भयरे साथ छाई वो वेर,
और खाना तो वही खाना माँ के हाथ का, चाहे हो जहर। तो माँ जो बच्चे को गो कोक के अंदर से वो उनको न्यूट्रिशन देता है, फीडिंग दैट अपने शरीर से नाभि से, इसलिए वो माँ का भोजन ही दिव्य भोजन होता है, वो प्रसाद होता है। इसलिए लेकिन वो भूल गए, हमारे राजस्थान में तो सब हाल बढ़िया भोजन बनावे सा, मैं आपने क्यों हूं, विदेश वाली बातों हैं। अब तो ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं कि मकान के अंदर किचन बनाते ही नहीं है, ग्रोसरी घर बनाते ही नहीं है, नीचे दो तीन रेस्टोरेंट होता है, जो को आ जाओ

महीने का उनके ऊपर दे देते हैं ठेका, और आए खाना खाए अपने कमरे में गए हरीसोम। अब उसके क्या क्या उस खाने पीने में उसका शरीर निरोग रहेगा, कैंसर होगा। सो दैट फॉर इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन हैव टू कुक एट होम देयर सेल्फ बट लर्न फर्स्ट हाउ टू कुक। ये बात है, नहीं तो सो देयर फॉर इवन कुकिंग इज मास्टर एंड यू हैव टू बिकम ए मास्टर एंड यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो टू बी ए मास्टर। सो ऑल माई भक्तास हु केम हियर फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दिस इज इन होल वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड ये मैसेज जा रहा है, दे सी यू ऑल्सो। तो माई डियर वंस प्लीज डू टू थिंग्स, डोंट पुट द चिल्ड्रन इन द नर्सरी एंड डोंट गेट फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। कुक योर सेल्फ, चाहे हस्बैंड कुक है या वाइफ, बट माताओं या पिता खुद भोजन बना करके खाओ, सस्ता होगा, अच्छा होगा। नंबर वन।